0: आर्मी ज्वाइन करनी है, बताया क्यों नहीं मुझे?
1: क्योंकि तू उस किस्म की लड़की लगती नहीं है जो आर्मी ज्वाइन करने वाले लड़कों को डंप कर देगी।
0: नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, लेकिन बंदा अगर मुझे अपनी दिल की बात ना कहे तो उसे डंप करने में मैंने 2 महीने नहीं लगने, समझ आई?

0: SBS गोरखा रेडियो हो
1: सैन्य समुदाय मा
0: रिलायन भरी
1: ऑन एयर
0: एप मा
1: अनि स्मार्ट स्पीकर मा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
0: यू बीएफबीएस गोरखा रेडियो हो।